करने लगे। गलियां चिक्कड़ हो गया मी ज्यादा है। फरीद अपने मुर्शिद नु सवेरे लकड़ा बाल के पानी गर्म करके इस्लान करावे अजमेर शरीफ। इना नु रंग चढ़िया इना दी मां कोल। ध्रुव नु रंग चढ़िया 7 साल दी उम्र विच मां कोल। फरीद साहब जागे ना, मां ने कहा पुत्र जाग, अल्लाह दी नमाज दा कायम हो गया। फरीद कहना मां नींदर बड़ी आई है 7 साल। मां ने सद मारी पिछे रात ना जागे हो फरीदा, जीवदड़ा मोयो, जै तै रब वसारिया तै रब ना विसरे। तू मर क्यों नहीं गया जदो जमया सी, जे तू ना नहीं सी लैणा अल्लाह करीम दा। एक दिन ते फरीद ने सुन लिया तो दूसरे दिन फिर मां ने जगाया, पुत्र उठ फरीदा, उठ फरीदा, उजू साज सुबह नमाज बिगा, जो सिर साई नानवे सो सिर कप उतार। फरीद फिर भी ना जागया। फरीद कहने लगा मां जी मैं अल्लाह का ना ला, अल्लाह की देगा, तू जो मंगे। कहने लगा मेनू गुड़ चाहिए, बच्चा नु गुड़ ना बहुत प्यार हुंदा, पिंडा थावां दे बच्चे जदों मंगना कुछ गुड़ मंगना, इधर दी तखेड़ी हो रहा। मां ने कहा गुड़ देगा मेरा अल्लाह ताला, नमाज पढ़िया कर और देगा। जदों उठे सवेरे उजू साज के मां दे नाल बह जे, मां लकड़ा दे गोहे बाल के साग चाढ़दी सी ते नाल अल्लाह अल्लाह करदी सी असबी नाल। फरीद भी लागे बह गया गोद विच, जपदा है मां खुश हुंदी है, जो जो जपदा त्यो त्यो मां शुक्रा मेरी कुख हरी होई है, मैं भी दुनिया ते आई। फरीद साहब जदो भोग पाउणा अल्लाह दे नां दा ते मां ने भी बस करना। कल फरीद हुण कारोबार विच चली, मलकड़े ओदे आसन दे थले इना गुड़ रख देण। फरीद ने कहना अल्लाह किन्ना चंगा, रब किन्ना चंगा, मेनू रोजाना गुड़ दिंदा, मां मैं जरूर नमाज पढ़िया करांगा और तेरे नाल उठिया करो। ऐसी आदत पाई ए कम चलदा रहा, कृपा हुंदी रही। जदों बिल्कुल पक्का हो गया मां नू कम पै गया रिश्तेदार। मां ने कहा पुत्र मैं दूसरे पिंड चली हां किसे ब्याह ते, नमाज टाइम नाल उठ के पढ़ी, सत बचन माता जी। मां ते चलेगी ते फरीद उठिया, अज मां भी फजर वेले उठी, कहन लगी अज गुड़ कौन देगा, अज ते मैं इत्थे आ गई हां, जे अज ना गुड़ मिलिया फिर मां दी डोरी टुट जाएगी और पुत्र खुदा नू जपना बंद हो जाएगा। अल्लाह अगे बेनती कीती, या अल्लाह, या रब, वाहेगुरु ईश्वर, मेरे पुत्र नू अज गुड़ तुसा देना। भक्तां दी बेनती सुनी और फरीद बिल्कुल प्यार नाल नमाज पढ़ी। जदों नेत्र खोले आसन दे थले गुड़ वेख रहा ते सारा कमरा गुड़ ही गुड़, पेसियां पेसियां पईयां, सारा कमरा भरिया। हस के कहण लगा अज ते खुदावंद करीम ने मेरे पूरे साल दा प्रबंध कर दिता, एडा वड्डा गुड़ खादा ते सही। और मन अंदर भावनी जाग पई, मां आई, तेरे मेनू ते बड़ा फिक्र थी, की हाल है तेरा। मां जी बहुत चंगा, पर मेरी गल सुनो, तुसी मेनू इन्ना गुड़ खुदा कोलो लै के दिंदे सी, अज खुदा ने कमरा भर दिता, हैरान हो गए। अच्छा पुत्र मेनू दिखा, देखिया ते कमरा भरिया गुड़ नाल, अज तो मैं तेरे खुदा दा मरीद और खुदा मेरा। मां ने कहा इत्थे मंजिल नहीं बेटा, हाली तेरा जपड़ा रहिंदा। जिस तरह गुरु हरगोबिंद साहब ने गुरु तेग बहादुर नूं कहा सी, हाली बाबे बकाले जाके नाम जपो, हाली कुछ रहिंदी है भगती। 22 साल फिर नाम जपया गुरु तेग बहादुर ने, जदों करतारपुर दा जंग तो बाद तेग भाई ते हजूर दा नाम ही तेग बहादुर पाकता। मैं बेनती करा होई कृपा, बाहर गए ते 12 साल ला के आया फरीद,
7 سال دی عمر تو 12 سال ہور لائے دروازہ ٹکایا ماں کون ہے بھائی میں پتر تیرا فرید جب کے آیا ہاں ماں جی واہگرو دی بڑی کرپا اللہ دی جدو ویکھیا تے سارے کے جڑے سی جراٹا بنیاں ہویاں کپڑے پھٹے ہوئے ماں نے چومیا نوایا پرشاد چکایا ماں دی ممتا فرید کنا کی چپیا جی بہت چپ آپ دی کرپا فرید جدو بھوک لگ گئی سی کی کردا سا کہنے ماں جی پتے پتے کھا لیندا سا پھل کھانا سا ماں کہن لگی تو پاس نہیں آئی اور کچھ سمان بتا 12 سال پھر جپیا پھر آیا ماں جی ہن دیکھو کہن لگے حالی بھی تو فیل جدو 12 سال پھر خوب وچ لڑکے کہن لگے کاگا کرن کنڈولیا سگلا کھایو ماس اے دو نینا مت سوئیو پھر دیکھن کی آس کاگا چونڈنا پنجرا بسے تو ڈر جائے جس پنجرے میرا شو بسے ماس تدو کھائے جدو پھر انیاں رہن تو ہویاں ماں نے

कर आसा आयो प्रभ मांगण। मैं बड़ी आस करके ही मेरे मालिक तेरे दर तो मंगण आया। कहिंदे ने मंगिया फरीद ने भी, बाबा फरीद ने मंगिया आस लाई। लिखो हुण आस कैसी है, साडे कलजुगी जीवां दी तरह नहीं, साडी आस ते बहुत कच्ची है। दो चार वर्षी गुरु घर आउने आ, आस पूरी हो जाए ते ठीक है, पंजवे दिन गुरुद्वारे ही नहीं वड़दे, साडी आस ही नहीं पूरी हुई। नहीं भाई, इस दर ते हर किसी की आस पूरी हुंदी है। हां एक

जरूर होई है कि जिस वेले आस पूरी होनी सी उस दिन तू आया ही नहीं, उस दिन तू घर छड़ के ही चला गया। इत ते रोज आ, रोज हाजरी पर, पता नहीं किस वेले अरदास मंजूर हो जानी है। आस पक्की रख के बह, ए ना सोच के पूरी नहीं होई जरूर होवेगी। हुण बाबे फरीद दे किसे आस लाउनी है?

हे मालिक मैं ये आस ला के बैठा हे प्रभु मैनू कदो गल ना लावेगा, मैं ते इस आस विच बैठा वा हे प्रभु मैनू कदो गल ना लावेगा। हुण ये आस ते पूरी ताई हो सकती है कि मनुख पक्की आस रखे, कच्ची ना हो, इतनी पक्की आस

भगत रविदास जी कहंदे ने मैं ते इसे आस ते जीउण डे तेरे दर्शन देखने ने भावे चिर बाद ही हो दर्शन तेरे जरूर करने ने भाई ये ते ताई हो सकता है मन ऐसा निश्चय यकीन विश्वास हो जाए वह भी तन श्री गुरु ग्रंथ साहब ते कि हे मेरे मालिक मैं तेरे दर्शन करना है। भगत जी कहते ने कहो रविदास परो तेरी सांभा भेग मिलो जन करना बिलांबा मेरे मालक जड तक तेथों दूर सा मैं देरी भी बर्दाश्त कीती है ते दूरी भी बर्दाश्त कीती पर हुण तेरी शरण विच आ गया हुण ना ते देरी बर्दाश्त हुंदी है ते ना दूरी क्योंकि दूरी मिट गई है फिर देरी क्यों भेग मिलो मैनू जल्दी मिल जन करना बिलंबा बिलंबा कहंदे ने थोड़ी जी भी देर ना ला टेल ना ला टाइम ना ला मैनू जल्दी मिल इसलिए साध संगत आओ ये अमृत वेला भागा वालिया नू नसीब हुंदा है बहुत कर्मा वालिया नू ख्याल करिया करो गुरसिख दे वास्ते गुरु दियां हर वक्त बाहां फैलियां होईयां ने आवाज देंदे ने आए मिल गुरसिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे ओए आ भाई आ मैं तो तेरी उड़ीक विच हां मैं तेरी इंतजार पिया करना ते तू अजे सुता ही नहीं उठया जे तू सुता नहीं उठया ते पाठ कदों करेगा जे पाठ नहीं कीता ते गुरु घर कदों आवेगा ते जे गुरु घर नहीं आया ते उस मालक नाल कदों जुड़ेगा कदों दे नाल तेरी प्रीत लगेगी आवो सिख सत गुरु के प्यारे हो गावो सची बाणी आओ भाई ए बाणी गुरसिख वास्ते है ते गुरसिख ने सुननी है ते आपां ए दो चीजां जरूर प्राप्त करिए अमृत ते अमृत वेला क्योंकि जद तक सिख पंथ अंदर ए दो चीजां रहियां ने चढ़दी कला विच रहे है जदों ए दोवें खुस गईयां ए टहिंदी कला विच तुरना शुरू हो गया साडे कोल इह वस्त खुस गई है ठीक है असीं इन्हां मुल्कां विच आ ते गए हैं इत्थे आ के असीं बड़ा कुछ गवाया है पाया कुछ भी नहीं मैं नहीं कहिंदा जिन्हों भी वेख लो तुसीं मिल के वह कहिंदा रहिण नूं मन नहीं करदा मजबूरन रह रहे हैं भाई जे कोई मजबूरी है तो चलो गुरु नाल ही मिल लो गुरु घर ही आ जाओ जिथे आ के कुछ देर ते मन नूं सकून चैन आराम मिले ऐसी गल नहीं है इत्थे रह के भी असी बड़ा कुछ गुरु कोलो प्राप्त कर सकते हाँ आओ ये दो चीजा जरूर हासिल करो अमृत अमृत वेला क्योंकि जिदे कोल अमृत अमृत वेला है उदे कोल सब कुछ है तो जिदे कोल दोवें चीजा खुस गई उदे कोल कुछ भी नहीं है वह खाली है सतगुरु बख्शिश करे सतगुरु रहमत करे अज अमृत वेले तो तुसा सतगुरु के दर से हाजरियां पर के संपूर्ण श्री आसा जी दीवार का कीर्तन सुन आसा दी वार दा कीर्तन ओ है धन गुरु नानक पातशाह दा हुक्म है जिहड़ा मन करके करे ते मन करके सुने ओदियां आसा पूरियां हो जांदियां ते असीं जिन्ने भी बैठे हां आस ला के बैठे हां सब को आसे तेरी बैठा सारी सृष्टि तेरी आस ते जीवत है कोई है ऐसा जिन्हों मालिक तेरी आस ना होवे हर कोई तेरी आस ला के बैंदा है आपां अरदास करिए सतगुरु साडियां आसां पूरियां करन अपने दर ते हाजरी लाउंदे होए आओ प्यार शब्दा सहित सारे मिलके रसना नूं पवित्र करो एक दो मिनट आपां सिमरन विच भी लाइए।

आप भावें दुखी हो लवे पर दूसरिया नु सुख दिंदा। ते कबीर साहब कहंदे ने आप गए औरन हूं खोवे आग लगाए मंदिर में सोवे। कई एहोजे भी आदमी जेड़े आप दी खराब हुंदे ने नाल दूसरिया नु भी खराब करदे। आग लगाए मंदिर में सोवे, मंदिर नू घर नू अग लगा के ते आपे विच जाके बह जांदे। एहो जे इंसान आप ते दुखी हुंदे ने नाल दूसरिया नू भी।

आप अंदर जाके सौ जाएंगे। ये भी नहीं पता कि अपने घर मैं आप ही अग ला बैठा ते अंदर आके सौ गए। जे घर सड़ेगा तो मैं भी नाल ही सड़ा। एहो जी इंसान केड़े।

केरल दा राजा एदे कार राजकुमार ने जन्म लिया। ए राजकुमार तिना दिना दा पड़ोसी राजे ने हमला कर दिता। केरल दा राजा अपने देश की रक्षा करता होया शहीद हो गया। जो समय का रवाज सी राजे दे नाल राणी भी तिना दिना दे बच्चे इस राजकुमार नू छड के राजे दे नाल सती हो गई। दुश्मन का कब्जा केरल ते हो गया। जेड़ी दाई इस बच्चे की देखभाल करती सी बड़ी सियाणी निकली। उस दाई ने ए विचार कीती जे ए राजकुमार दुश्मन राजे दे हाथ लग गया ता उन्हें इनू मार देने, क्यों ना मैं इनू इथों ले चला। उस दाई ने इस राजकुमार नू जिदा नाम भगत चंद्रहांस है कपड़िया विच लपेटिया चोर दरवाजे तू निकल के दूसरे राज चंदनपुर चली गई। चंदनपुर एक घर ले लिया, इथे रहन लग पई। मंग तंग के लियाना अपना पेट भरना इस यतीम राजकुमार चंद्रहांस की पालना करनी। चंदनपुर का जिहड़ा राजा सी बड़ा धर्मात्मा सी। इसे राजे का वजीर जिदा गुरबाणी विच नाम त्रिष्ट बुद्धि आया। ए वजीरे समझदा सी कि राजे

क्योंकि मन माड़ा कर्म भी ये माड़े सोचता भी माड़ा है इस वास्ते ता एहो जी लोका वास्ते।

एक संत मंडली शहर दे बाहर आई, जेड़ा मदन सी साधु सुभा दा बंदा, दूसरा भरा अमल ए अमलां विच लगा रहिंदा सी। जिथे महलां विच राग रंग हुंदे सन उत्थे मदन दे सदका कदी कदी कीर्तन भी होया करदा सी। संत मंडली महलां विच आंदी, कीर्तन करदी ते वापस अपने टिकाने चली जांदी। एक दिन चंद्रहांस तुरदा तुरदा संतां दे डेरे चला गया। जेड़े मुखी संत सन उन्हां चंद्रहांस नूं देखिया, मन बड़ा खुश होया, अपने कोल बठा लिया। एक राजकुमार सी, मोचित लगदा सी, संतां कोल बैठा रहा। हुण चंद्रहांस दा रोज दा कम बन गया, रोज संतां कोल आ जाना। इन्ना प्यार बनिया कि हुण संतां कोल ही रहण लग पिया। उधर मदन ने महापुरशां नूं महलां विच बुलाया, कीर्तन तो बाद लंगर शुरू होया, पंगतां लगियां। जेड़े मुखी संत सन चंद्रहांस उन्हां दे कोल बैठा सी, सारे लंगर छकन लग पए। त्रिष्ट बुद्धि वजीर

फिर श्रीमती वजीर कहन लगा केड़ा राना केड़ी ऐसी गल उस परमेश्वर दी तुहानू याद आई है तुसी हस पए हो। संत कहन लगे उस परमेश्वर दे रंग भी न्यारे ऐ दुष्ट बुद्धि वजीर ऐ जड़ा यतीम राजकुमार चंद्रहांस साडे कोल बैठा है समय दे नाल ऐसे यतीम चंद्रहांस ने इस चंदनपुर दा राजा बनना है ते इस राज दा जवाई बनना है। ए सुन के वजीर दे पैरां थल्लों ते जिवें जमीन निकल गई

हाथ जोड़ के चंद्रहास खड़ा हो गया ते कहंदे भगवान संत जी कहंदे सन के जेड़ा भी भगवान नु मन करके

पर डर नहीं मन विच महापुरुषां दे कोल रहण करके रब दे भरोसा हो गया सी। चंदनपुर दे कोल कुंतलपुर एक छोटी रियासत सी। इहदा राजा कुलिंदर शिकार खेड़दा जंगल च आया। कन्ना दे विच किसे दे गाण दी आवाज पई। राजा कुलिंदर अगे होया, देखिया छोटा जिहा बच्चा बड़ी मिठी सुर विच भजन गा रहे है। राजा कुलिंदर घोड़े तो उतरे है, चंद्रहास दे कोल गया ते पुछिया, काका तू कौन है, जंगल विच की करना पे। चंद्रहास ने सारी गल दसी। राजा कुलिंदर दे घर औलाद कोई नहीं सी। राजे कुलिंदर ने चंद्रहास नूं घोड़े ते बिठाया, अपने महलां वल लै तुरे है। जिस तरह साहब जी कहिंदे ने, पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटी, पेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। कोई पिछले जन्म दे संबंध सन जो प्रगट होए, ते राजा कुलिंदर चंद्रहास नूं घोड़े ते बिठा के अपने महलां विच लै गया। राणी भी खुश होई। सारे शहर विच टंडोरा फेरिया गया कि राजा कुलिंदर जंगल विच एक लड़का लैके आया, ओनू मुतबन्ना।

राजे कुलिंदर ने चंद्रहांस नु अपना मुत बनना अपना पुत्र बना लिया। सारे शहर विच खुशियां मनाईया गईया। एक पास राजा कुलिंदर है जिदा मन साफ परमेश्वर दे पै विच रहिंदा है, परमेश्वर नाल प्यार करदा है। एक पासे त्रिष्टबुद्धी वजीर है जिड़ा कपट ईरखा ते दुबदा दे नाल भरिया होया है। एहो जे वजीर एहो जे इंसान जिन्हां बारे

रस्ते दे विच चिट्ठी खोल के ना पढ़ी, किसे दे चिट्ठी पढ़नी महापाप हुंदा। चंद्रहास ने वो चिट्ठी पग विच टुंग ली, घोड़े ते चढ़ के ए चंद्रहास चंदनपुर नू तुर पिया। ज्यों सवेर दा तुरिया, शाम दे वेले चंदनपुर जा पहुंचे है।

चौथा कहन लगा तुहानू नहीं पता मुंडे बड़े शतान इना मुंडिया ने कंध टप के गन्ने तोड़ के ले जा करने ए सुन के पहले नु गुस्सा आया कहन लगा ठीक है कमाद से फिर लावांगे गन्ने फिर बीजांगे आओ पहला पिंड वाले ने देख ली ए चारो जने उठे पिंडा च मकान ते कच्चे ही हुंदे पराली ना कठी कीती सारियां दे घरां दे अगे पिछे पराली कठी कर दित्ती रात दा वेला सी ते पराली नूं अग ला दित्ती लोकी जिहड़े सन घर छड़ छड़ के बाहर नूं भज्जण लग पए ते ए चारों जने चौंक विच खलोते कहण आओ तोड़ो गन्ने देखदे आं तुसीं हुण किवें साडे गन्ने चूपदे हो किवें गन्ने भन्नदे तो एहो जिहड़े मूर्ख इंसान उहनां दा वी कदी भरोसा नहीं करना चाहीदा अपने आप नूं सियाणे समझणगे दूसरियां नूं मूर्ख दूसरियां वल देख के हसदे ने पर आप गाणे कोई चंगा काम करदा उहनूं ते माड़ा कह

किसी बारे ना माड़ा सोचो ना किसी नूं माड़ा कहो दसां नवां दी कीर्त करो हर इंसान दे नाल प्यार करो हरेक इंसान दे विच परमेश्वर वसदे ते जदों आपां इह समझ लवांगे सारिआं विच परमेश्वर है जे किसी बारे माड़ा सोचांगे ता समझो फिर असीं रब बारे माड़ा सोचदे हां इस करके सब नाल प्यार करो जदों सारे नाल प्यार करोगे ता सारिआं विचों तुहानूं रब दी झलक नजर आवेगी।

परम सत्कार योग साध संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। सतगुरां दी मेहर दा सदका सतसंगत दा सुहावना समा प्राप्त होया। सतगुरां ने मेहर करके खुले दर्शन द्वार सचखंडी दरबार विच दर्शन दिते हन। निहाल ताई बख्शी है संगतां नूं आप माई भाई दूरों नेड़ों चल के सतगुरां दे दर्शन संगत दे दर्शन फरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाईयां रल मिल के अकाल पुरख वाहिगुरु जी दियां कथा कहानियां शोभा वड़ियाई सरवण कर रहे हां। बहुत वड्डा पुन है, बहुत वड्डा दान है, बहुत वड्डा जग है बाणी सरवण करनी। सतगुरां दा हुक्म है कोट पुन सुन हर की बाणी। करोड़ां ही पुन्नां दी प्राप्ति हो जांदी है जदों वाहिगुरु दा नाम सरवण कीता जांदा है। करोड़ां पुन्नां दी प्राप्ति, थोड़े जिहे पुन हो जाण उही बथेरे ने। करोड़ पुन कौन करे जग विच, पर परमेश्वर वाहिगुरु दा नाम प्राप्त होण तों करोड़ पुन प्राप्त हो जांदे। दूजे पासे साध संगत फिर दूसरा बचन भी है, जे वाहिगुरु दा नाम प्राप्त ना होवे तो सतगुर कहिंदे कोट बिघन तिस लागते जिसनों विसरै ना। जे नाम दी प्राप्ति है तो कोट पुन मिल रहे ने, जे नाम भुल गया तो करोड़ां पाप मिल रहे ने। कोट बिघन कठे ही करोड़ां पाप नूं लगणगे जिसनों वाहिगुरु दा नाम विसरिया हो। सतगुरां ने तो इथों तक लिखिया कि नाम संग मन प्रीत न लावे कोट कर्म कर तो नरक जावे। कोई वस दी गल नहीं रहनी अपने गुरमुख प्यारियो, किन्ने क कर्म कर लांगे संसार विच, भी पंजा सौ कोई चंगे कर्म कर लूगा। ते महाराज तो कहिंदे जे करोड़ कर्म भी तू कर लवे वाहिगुरु दे नाम नाल नहीं जुड़िया फिर भी नरकां नूं जावेंगे। नाम संग मन प्रीत न लावे कोट कर्म कर तो नरक जावे। हरखा नाम जिन मन न अरादा चोर की न्याई जमपुर वद। उस नाम दी प्राप्ति आपां करन वास्ते सतगुरां दे चरणां विच हाजर होए हां। ऐनी अमोलक चीज, ऐना अमुल पदार्थ गुरु जी किन्ने दयालु हन, बिना कीमत तों बिना किसे मुल तों बख्श रहे ने, बिना तफरके तों बख्श रहे ने। कोई छोटा वड्डा ऊंच नीच साध चोर किसे नस्ल किसे कौम दा एडी वड्डी दात अमोलक जिस दे बिना तां गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बचन कर दिता जिन्नियां भी गल्लां संसार विच करदे हैं जे वाहिगुरु दा नाम नहीं है विच।

पर कोई न जाने तुम्हारा अंत कौन को आहारी तेरो नाम त्यायत है पूर्व पलाऊ काम रूपों कमाऊ सर्व ठौर में बराजे जहां जहां जायत है सर्व ठौर में बराजे।

कागद दीप सवै करके अर सात समुंदर न की मस कह हां काट बनास्पति सगरी लिख बेहू के लेखन काज बने हां लिख बेहू के लेखन काज बने हां सास ते

गावत नो मोहनिया मन मोहन गावन तुनो मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले